0: वात्सल्य भरतपुर क्लिनिक 24 कोठी भरतपुर फर्टिलिटी होप लाइन 01-597-06-11
1: सिनर्जी एफएम 91.6 चितवनको आवाज।

0: वात्सल्य भरतपुर क्लिनिक 24 कोठी भरतपुर फर्टिलिटी होप लाइन 01-597-0611
1: Synergy FM 91.6 MHz.

जनाब मुकेश माथुर, जो प्लेबैक सिंगिंग में सिर्फ मुकेश के नाम से मशहूर हैं। शुरू शुरू में उन पर भी सैगल साहब की गायकी का बहुत असर था।

सैगल साहब का जमाना, उनका दौर उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उस दौर में और भी कई फनकार हुए, लेकिन उनमें से एक फनकार मास्टर मदन, जो बहुत कम उम्र में ही गुजर गए, सिर्फ 13 साल की उम्र में, लेकिन उनकी गाई हुई दोनों गजलें एक यादगार हो गई।